0: ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କଳା ବା ବିଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ମାତ୍ର ଦରକାର, କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁକେଶ କୁମାର ବଲ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी संबलपुर आरंभ करुछु भक्ति संगीतर कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम प्रथम भक्ति अर्घ्य कल्याणी पाणिग्राही कंठरे तुलसीदास रचनारू।

0: आरक्षकयन्त्रस्य सुरक्षाधिकारिणां च मध्ये प्रभावी सम्पर्कः आवश्यकः अस्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प अद्य चीनदेशस्य त्रिदिवसीया यात्रायै बीजिंग नगरं सम्प्राप्स्यति। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यस्य चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनपिंग इत्यस्य च मध्ये बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिकसम्बन्धानाम् अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 82 अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: संस्कृतरे संवाद सुनिले रिले कलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्ररु आकाशवाणी संबलपुर एथरो सुनंतु आज आम केन्द्र प्रसारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना आज सका 17:10 स्वास्थ्य सूचना स्वच्छ हाथ शरीर केते जरूरी ए संपर्क में कहे डाक्तर स्मिता कुमारी पंडा परिवेश सूचना सका 7:30 जीवाश्म ईंधन परिसमाप्ति और विश्व कहे डाक्टर समापिका दास संबलपुरी गीतर विशेष कार्यक्रम उद्यातरा प्रचार करिबो 17:35 कंठशिल्पी माने होचंती रामेश्वर दास एवं मिनती पाणिग्राही गीत रचना लाल रत्नाकर सिंह संगीत प्रफुल्ल कुमार मित्र 17:50 सुगम संगीत कंठशिल्पी मोहम्मद सिकंदर आलम एवं गायत्री बोस 8:30 संबलपुरी गीत शुणिबे शिल्पी होचंती मोहन सेठ एवं जितेन्द्र हरिपाल सुगम संगीत पुणि थरे शुणिपारे 8:45 शिल्पी शंकर प्रसाद दत्त एवं श्रीक्षेत्र सुंदर ओडिया कथाचित्र गीतर लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो अनुरोध प्रचार करिबु 9:00 दिन 11:05 संबलपुरी गीत कंठशिल्पी ऋषिकेश मेहर गोपालकृष्ण दास मकरध्वज धरुआ एवं कृष्णा पटेल दिन 11:30 एवं दिन 12:00 हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम खोला झरका एवं बातायन शुणिपारे दिन 12:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम सुगम संगीत दिन 1:05 कंठशिल्पी होती संयुक्ता पटनायक देवेन्द्र कर एवं छंदाराणी साहू दिन 1:20 प्रचार करिबु पारंपरिक संगीत शिल्पी माने होचंती बसंत कुमार महाराणा शिवानंद त्रिपाठी संघमित्रा पाढ़ी अभिजित जाल एवं प्रियंबदा राउत दिन 2:45 हिंदी कथाचित्र गीत दिन 3:00 किसान संप्रदायर सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवनधारा उपर आधारित किसान भाषार विशेष कार्यक्रम माका पुपु झकाझका दिन 3:30 ओडिया कथाचित्र गीतर कार्यक्रम अपराह 4:02 आकाशवाणीर नवबर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित लोकसंगीत समारोह नुआ नबेर संपादित अंश शुणिपारे संध्या 5:02 लोकगीतर कार्यक्रम खंजणी भजन परेषण करेंगे ब्रह्मानंद भोई एवं साथी संध्या 5:30 जुबवाणीर संकल्प कार्यक्रम संध्या 6:10 ओडिया लघु संगीत उज्ज्वल आम देश संध्या 6:30 एवं आजिर प्रसंग संध्या 6:55 राति 7:25 जिला हालचाल एई तीनोटो कार्यक्रम को रिले करिबो आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 7:30 कृषि संसार कार्यक्रम रे चासिंग का सह साक्षात्कार क्रम रे प्रभासिनी मेहन का सहित साक्षात्कार सुनिबे राति 8:02 संबलपुरी गीत कंठशिल्पी विभूतिभूषण पटनायक एवं कृष्णा पटेल ओडिया भक्ति संगीत कार्यक्रम राति 8:15 राति 8:30 शास्त्रीय संगीत रे सितार वादन परिवेषण करिबे पंडित कार्तिक कुमार राति 9:15 स्पॉटलाइट कार्यक्रम रिले करिबो आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रु राति 9:30 शुणिपारे संबलपुरी नाटक कथांतर रचना आशीष कुमार सोनार निर्देशना सत्यरंजन बेहरा परिवेषण करिबे श्री सांस्कृतिक अनुष्ठान संबलपुर कलाकार माने एवं राति 10:30 ओडिया लघु

0: झुमुरता तक झुमा झुम झुम झुमा रे तक झुम झुम झुमुरता।
1: कार्यक्रम परवर्ती कंठशिल्पी रामेश्वर दास।

0: ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଷ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ କେ ସାଥ ମୈଁ ଫରହତ ନାଜ। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि

0: चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदयचंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग सहयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन

0: दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं।

0: आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्कार आपणकर परिचय देमा पहला अमर श्रोता मानकु
1: मु जसवंत पाई गा बुढापल्ली भाया विजयपुर जिला बरगन को कहदिल नानी
0: जसवंत भाई बहुत बहुत स्वागत आपणकु आजर कार्यक्रम के आ केंदा अछन केंता अछन
1: बोलो छे नानी
0: आउ काना
1: अच्छा
0: जाहो आपण माने भल थिले सुनिकरी खुशी लागसी हमकु आउ घर परिवार सबे ठीक थिबे लेखला आशा करूछे मैं घरे सबे ठीक थिबे त
1: हां समस्ते भलो छन ने
0: अच्छा आउ काना खबर कहुन
1: सब तो भलो छे खरा तरा टिके बढ़ी जे बाकी खरा तरा न तमने दुरे गुर रहू जो घरे रहू जो सब बेले बाकी गुटे कथा आपन को पचरावी नानी
0: हां कहुन जे जेंटा पचरावे तारागनो गीतटा कहि दोन त केन गीत सुनमा आज हमें
1: आकाशे की रंग लागिला रो टाइटल सॉन्ग ता देबे नानी
0: अच्छा ठीक अच्छे आकाशे की रंग लागिला गीत सुनमा हमें हो कान पचरो थिले
1: गत काली माने 90 वर्ष पूर्ति उपलक्षे जे आकाशवाणी गुटे इटा ने करथले के नानी आपन
0: कार्यक्रम हेतिला संगीत समारोह कार्यक्रम चली थिला अमर हां कहुन आज आमे सेटा फिर प्रसारित होउचे हां हां आमे सबे जाइथिलु आकाशवाणी रामर समस्त आमे जाइकिरि सने थिलु जे जे आज आपण सेतार बेतार विवरणी सुनि पारबे दुई पहर रामर 4 बजे करि 2 मिनिट नु बेलबुडार 5 बजे तक सेटा बाजबा आ सेटा सुनबे
1: बहुत सूचना के देले नानी सेति लागि धन्यवाद है काई करि बोले जिन माने भी त माने नै आमे माने जे हेतु नै जे पारि बोले आमे बेतार विवरणी सुनि करि हेले त माने मनोरंजन करमु न नानी
0: हां सेटा त हेति लागि जेन माने आसी न पाले समान कर लागि कार्यक्रम रखा है छि आउ इटा आमर आजिरर जेन कार्यक्रम अछे आकाशवाणी 90 वर्ष पूर्ति उपलक्षे लोक संगीत समारोह जेन हेतला नुआ 90 तार संपादित अंश सेटा सुनबे सबे आमर आज दुपहर 4 बजे के 2 मिनिट नु 5 बजे तक इटा बाजबा
1: या भी धन्यवाद नानी
0: ठीक अछि त पसंद रा गीत सुनमा के आकाना कहबे
1: निश्चित भाबे सुनमा इहा के ना हमर तमने नुआ श्रोताते हमर तमने संघरे जुड़ी हिजन सेटा होजन ओम आनंद मेहे
0: आज्ञा आज्ञा
1: ताको ई गीतटा डेडिकेट कर देमा और जति होजन हमर संघर समस्तंकु तमने ई गीतटा डेडिकेट है नानी
0: ठीक अछि तो आपणकर तरफ रु गीतटा समस्तंकु डेडिकेट करा गला आ जे नुआ श्रोता अमर संगे जुड़ी हिचन आमे तांकु बहुत बहुत स्वागत करछु अमर हेलो अनुरोध परिवार के आ से एंता जुड़ी हिकिर रही थाउ नामकु फोन करून अमर संगे कथा होन आ से भी शामिल होन कार्यक्रम थी तो तांकु भी डेडिकेट करा गला आपणकर तरफ रु गीतटा तो सभे मिसिकिर सुनमा
1: नमस्कार नानी
0: नमस्कार

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हाँ मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार आज्ञा, आपनकर परिचय देमा पहला अमर श्रोता मन कर लागी।
1: मैं डोमाल उदिनपुर कलाहांडी रो मनोज कुमार पटेल कहू छे।
0: मनोज आज्ञा बहुत बहुत स्वागत। आ सुदूर कलाहांडी नु आपन करथिबार लागी फोन आपनकु धन्यवाद जनाउ छे।
1: आज्ञा आज्ञा।
0: आ कलाहांडी नु तो अमर बहुत श्रोता जुड़ी हे छन अमर संगे, सब बेले फोन करसन हमकु। आ आपन भी तो अमर नियमित श्रोता। बढ़िया अच्छे आज्ञा, आपन केनता
1: अछन बोलले?
0: बढ़िया अच्छे, बढ़िया अच्छे। आपन केनता अछन? हां
1: हमें भी भल अछ आज्ञा।
0: भल अछन? अच्छा तो आज केन गीत सुनबा ले फोन करले आज्ञा?
1: आज बलिदान बलिदान फिल्म रो नई जारे मामा मते फिल्म गाना सुनाई देबे आज्ञा।
0: अच्छा बलिदान सिनेमा रो नई जारे मेघ मते सिनेमाटा सुनमा, सिनेमा रो गीतटा सुनमा। आउ कौन काना काना चली छे?
1: चास बाड़ी चली छे आ गया यहाँ पे। हमार करला काकड़ी भेंडी बरबटी सब चली छे आ गया।
0: बढ़िया, चास कथा सुनले तो खुशी लग जैसी ने। सब दिन अपन माने खेत के जाउथिबे, पूरा प्रकृति संगे जुड़ी ही किना रहउथिबे।
1: आ गया आ गया।
0: आउ जेंटा भी माने अपन चास करचन सेटा आउ घिनबार के ने पडुथवा अपन को घर लागि ने? ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया कथा। तो आपनकर पसंद रो गीत सुनमा? हाँ कहुन कहुन कहुन। हाँ कहुन आज्ञा सुनुचे। हाँ कहुन ना माने कहुन।
1: चित्रसेन सबर, सीमांचल सबर, क्षमा सागर साहू, बाबू पात्र, निराकार राणा, करम सानी साहू, राधाकांत, सुबल साहू, चैतन्य पटेल, उपेन्द्र सुना, आओ हमार कोटाबाली स्वर्ण कवा करो जगदंत पाइक।
0: ठीक अच्छे, जेन मानकर ना कहले धन्यवाद धन्यवाद। आउ जेन मानकर ना कहले आपण, जेन मानकर ना पासरी भी देले, समस्ते तो सुनुछन, जेन माने समस्ते हमर कार्यक्रम सुनुछन, समस्त को डेडिकेट करा गला आपणकर तरफ रु गीतटा। तो सुनमा
1: धन्यवाद, नमस्कार
0: नमस्कार, धन्यवाद।

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो,
1: आज्ञा। हाँ मैडम नमस्कार, बलगोविंद मित्र सुलेजा झारसुगुड़ा जिला नु कहू छे।
0: आज्ञा, स्वागत करू छे आज रो हेलो अनुरोध कार्यक्रम के।
1: मैडम
0: हाँ, आ केनता अछन? आज्ञा
1: बढ़िया छो, आपन माने केनता अछन?
0: सबे बढ़िया अछन। आ कोन आपन कर काना काना चली छे? आ काम बुता केते गलानो?
1: घरे गले मैडम, हमर माने ये पंडिती काम करसु तो आज किसी एना पंडिती नै न बोले घरे आज होछु। आओ
0: अच्छा अच्छा
1: मोर मैडम एमबीके काम करसन, तांकर गुटे आज कना माछ धरवार प्रोग्राम अछे तो बामन लगेले भी का करवा, माछ धरि लागि काम तो करि लागो।
0: काम तो काम आया है गया, आओ का करमा नै, जहाँ के जेन
1: एमबीके
0: हिसाबे काम मिलिस से उसारे करमा।
1: तो तांकर से फोटो फुटा करवा लगि जाई जान। आओ मोर मैडम तो एमबीके
0: अच्छा मैडम का केने काम करसन बोले? हाँ हाँ जे जे आज्ञा। हाँ कथा आमा, आपण पहला किन गीतटा सुनबे टी कहि दोन तो। अच्छा अच्छा रिभेंज सिनेमारू आमे सुनमा गोटिए फुलर नाटी को। ठीक अच्छे।
1: हाँ
0: आज्ञा आज्ञा मैडम कर कथा होतना आमे केने काम करसन कि मैडम?
1: पंचायत एमबीके अच्छा ना हमर हमर इटा गुट।
0: अच्छा अच्छा हाँ ठीक अच्छे। आज्ञा तो
1: जा
0: हो मैडम ही काम करू छन। आपण कर वॉइस टा टिके कटी कटी जाउछ आज्ञा, भल से नाही आसबा टिके बुझी नाही हेबार। हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा ठीक अच्छे। जाने की खुशी लगला आज्ञा, आपणकर मैडम भी काम करूछन बोलिकिरि। हाँ ताहले आपण पसंद करछन रिवेंज सिनेमार गीतटा सुनबार लागि कहुन।
1: अरे आपण को डेडिकेट कर देबे
0: आज्ञा।
1: हमर जेतकी श्रोता आपण के समस्त डेडिकेट कर देबे, तारपर मोर मैडम एमबीके मैडम दीपांजलि मिश्र, बिहारी लाल भोई, प्रशांत कुमार दास, लिली दास, आउ समस्त श्रोता बंधु मान डेडिकेट कर के गीतटा सुनै देबे।
0: ठीक अच्छे आज्ञा, ताहले समस्त मिसिक्रिया सुन गीतटा सुनमा।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

हेलो, आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम। हेलो हेलो, नमस्कार आज्ञा, बहुत बहुत स्वागत। परिचय दमा पहला श्रोता मान को। लक्ष्मी नारायण आज्ञा, स्वागत करुचे। केंता अछन कहुन? बढ़िया, सब बढ़िया चलीचे। आज्ञा, आउ केंता आपनकर आड़े खरा केंता होचे? प्रबल होचे बेले तार आय उपाय केंता करुछन? अच्छा ठीक अच्छे। तो खरा दिने तो खरा हबा आ गया, हेले आमे सेथि लागि सावधानता रखमा, सचेतन हमा टिके, आउ देखि चाहिकरि निजके जगी रखिकरि चलबार अछे। आउ हेले आज केन गीत सुनमा? सपन सागर सुनमा बाटोई भाई। ठीक अच्छे आज्ञा, तो आपणकर

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चित्र संसार कहि कोलाहांडी जिला भानीपाटना जगन्नाथपुर।
0: चित्रसेन आज्ञा, स्वागत करुछे आजर हेलो अनुरोध कार्यक्रम के। आउ
1: कोलाहांडी
0: थु तो आपन फोन करसन सब बेले, हेति लागि तो फिर भी आपन को धन्यवाद
1: देबे।
0: बढ़िया अछे, आपन केंदा अछन?
1: मो मते बहुत भलो रे अछि नानी।
0: अच्छा, जा हो, आपण माने खुशी रे थिले, भल से थिले, सुनिकरे हमको भी भल लागसी।
1: हां नानी,
0: हां, आउ केते दूर गला न आपण कर कबार
1: कबार ता नानी, सेंगरा सुंगरी बिरी बरा सब छाना छोड़ी कर देली नानी। आर एडा घर के ठीक भी आसली नानी, मिस्त्री के छड़ी दिसे, मिस्त्री बनौची आउ
0: छाना छोड़
1: कर।
0: बले हेलो अनुरोध, जेन दिन थीसी हे दिन जल्दी टिके काम उसरे देसन ने, आज के फोन करमी बोली। हां बले केन गीत सुनमा
1: आज? के ए आम संसार ओटा सुने देवे नानी।

0: हेलो, आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: हेलो,
0: नमस्कार आज्ञा, आपण परिचय देवे। आज्ञा आज्ञा, बहुत स्वागत करुचे। आज्ञा, आपण संगे आगु कथा हेतिली थरे केते आज्ञा आज्ञा। अच्छा, बेले आपणकर टिके भॉइसटा भलसे नाही, सुभार कटी कटी गला लेखे लागुचे। हेले किन गीतटा सुनबे जे पहिला कहि देथौं त तबर कथा लागो त मानु आमे। हाँ, सिनेमाटा ममता मागे मूल नै, आ गीत होउचे एई जीवने मो जीवने, एटा सुनमा। अच्छा हाँ, काणा बोलले आज्ञा, नाही बुझी पारली। ना कहबे तो जहाँ के डेडिकेट करवा ले चाहूँ। ठीक अच्छे, हाँ कहू ना आज्ञा। जा

देखिली बहुत बण न देखिली हाथी कुल कुल जाय सर्वे ढोल पिटु चंती देखिली बहुत

0: ज्ञान चापुड़ा सम्मान जीवती उतुरी आहे ब्रह्मचारी आहे ब्रह्मचारी।
1: हेलो आकाशवाणी संबलपुर, हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
2: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार आज्ञा, की कहुतले केनु कहुतले?
2: सुरेंद्र कुमार साहू, गांधी टिकरा, पोस्ट ऑफिस कुलता टुकड़ा, डिस्ट्रिक्ट बरगढ़। आज्ञा
1: आज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है। आउ आपण बोधे आजर आमर लास्ट कलर हेबे। हेले पहला गीतटा कहि दोन, केन सिनेमा रो गीत सुनबा लै चाहौचन? केन गीत
2: शंखा चंद्र रो?
1: शंखा चंद्र रो केन गीत?
2: तुमे देवता मोर,
1: अच्छा
2: तुमे शंख तुमे सिंदूर।
1: ठीक अछे आज्ञा, तो आपन को गीत सुनामा। आउ कोन केंदा केंदा चली छे, केंदा अछन?
2: बोलो चाहे आज्ञा, आपन कंदारन पुटिन आज्ञा।
1: आज्ञा आज्ञा, जानी पाले? ठीक अच्छे,
2: हाँ
1: कहुन आज्ञा, कहुन जल्दी कहुन। हाँ धन्यवाद।
2: ठीक अच्छे,
1: समस्त गीत सुनुन।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମୁକେଶ କୁମାର ବଲ। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से देश

0: के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपण मैंने कार्यक्रम सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नु मूल करुछु ओडिया सिनेमा गीतर कार्यक्रम। कार्यक्रम रो पहला गीतटा सुनुन सिनेमा नारी नुहे तु नारायणी। कंठ देछन ईरा महांती आउ प्रकाश। गीत आउ संगीत देछन स्वरूप नायक।

0: ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଶୁଣୁଥିଲେ। ସିନେମା ଚଲତେ ଚଲତେ ରକେତଟା ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଆଦେଶ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଆଉ ଯତୀନ ଲଲିତ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ଇହାଦେ ସମୟ ଦିନର 11 ହେବାରକେ ଯାଉଛେ। ହିନ୍ଦୀ ଥି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନ୍, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ର ନୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: ना रंगासामी कड़वलीन पेयराल उरुदी कूरुदावदे नान नेर्मुगमागो अल्लदे मरेमुगमागो ओरुवरुको अल्लदे पलरुको இந்திய ஒன்றியத்தின் புதுச்சேரி ஆட்சி பரப்பின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் என் கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்படும் அல்லது எனக்கு தெரிய வரும் எந்த செய்தியையும் மேற்கூறிய முதலமைச்சர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடமைகளை முறையாக ஆற்றுவதற்கு தேவைப்பட்டவரன்றி தெரிவிக்கவோ அல்லது வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன்.
1: अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवेयम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा नेता अध्यक्ष वीपी रामलिंगम अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वित्री कड़गम टीवीके के सरकार को विधानसभा में आज बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे आज चिली के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोपहर बाद वे दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम को डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेय लावरोव से भी मिलेंगे। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नाशिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नाशिक से शुभम को हिरासत में लिया। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार से पहले मामूली रूप से बढ़त नजर आई और फिर इसमें गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 75 अंक की अधिक की वृद्धि के साथ खुला और बाद में 180 अंक गिरकर 74,360 पर आ गया। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 24,350 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी सम्बलपुर मूल करुछ सम्बलपुरी गीत कार्यक्रम पहला ऋषिकेश मेहर गाई थी गीतरा सुनुन गीत लिखिछन कृष्णचंद्र बारिक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओं, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा
1: जी।
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें
1: जी।
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है
1: जी।
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
2: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
3: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
4: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा धाग।

0: प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी होगा।
0: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी,
3: कौन है? दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ, हाँ बड़ा ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं।
4: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: पंखा जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
0: अब गर्मी अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं? पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो ना, चलते हैं।
0: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: अम्मा, दे दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
0: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
0: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
3: नहीं समझी?

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: तुम तो बड़ी समझदार हो।
2: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम कुल्फी वाला, बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
1: आइसक्रीम। बच्चों मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
3: अरे कोई खाने को दे तब ना।
4: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ।
1: और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
1: लो।
3: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
6: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
7: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती हैं।
8: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
7: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
9: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
10: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
8: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया हैं।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
7: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
7: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
7: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी,
8: यस सर।
7: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर।
8: उधर से। हाँ।
7: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
7: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
7: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
7: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
7: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
9: यस सर।
7: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
7: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
7: कोई शक?
2: नो सर। नो सर।
7: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
9: यस सर।
2: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
8: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
8: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
8: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
8: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
8: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
8: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
8: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे धीरे
2: धीरे।
8: बस अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
2: रेंगेंगे।
8: जी सर।
2: कोई भी उठ कर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे।
8: नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर।
8: एवरीबॉडी रेडी?
9: यस सर।
2: यस सर।
8: अब हथकोला फेंको।
7: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और श्रोताओ अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: शुणुले NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम

0: करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्नपत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ରିଲେ କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ସଂଯୁକ୍ତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତଟି। ଗୀତିକାର ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री मंत्रियों अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य 4 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: श्रोता बंधु आपने कार्यक्रम शुणुंत आकाशवाणी कटक केन्द्र कार्यक्रम प्रचारित होनिश 8.6 मीटर तथा 970 किलोहर्ट्ज़ चुके

0: नेला रे झाऊ मारी नेला, झाऊ मारी नेला रे झाऊ मारी नेला।
1: हाय हो सुनु छ
2: इबो एडे टान खरा न तमे केन के बाहर होछ ना देखबार के आकाश नु निया बरसिला बागिर लागु छे।
1: अरे जरूरी काम टे पड़ी गला परे नाही गले नाही चले पले आमी जे संगे संगे।
2: ओहो रे तमर जरूरी काम हो संगे छताटा नहीं करी मुडे उदागाम छटे दे करी जो आ तुम जिन कला चश्माटे रखी छो हेटा लगाले तो हीरो बागे दिस गो हेटा लगे करी गले ना हेता फिर बार लगी जदी डेरी हेबा बोले संगे पान बोतलटा भी धरी थो।
1: ओहो रे मुर्सियानी ई कथाटा जन कहलो नहीं मन के पहला। अरे झाऊ मारबा नु नीच के बचाबार लगे ई सब कथा करबार के पड़बा नहीं हेले विपद है बुझलो।
2: मारी

0: ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା। ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए

0: यादव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता मैंने कार्यक्रम सुनुचंते आकाशवाणी संबलपुर केन्द्ररु एथर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
3: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई आशुतोष पाणिग्राही। शक्ति और सामर्थ्यर समन्वयर गुरुत्व के जोर देइछन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। कहले सारा पृथ्वी के भारत इच्छा शक्ति सहित परिचित करेथिला पोखरण परमाणु परीक्षण। तमिलनाडु विधानसभा न आस्था भोटते जितले टीवी के सरकार। 5 नंबर थर लगे पुडुचेरीर मुख्यमंत्री भाव शपथ ने एन रंगास्वामी। सुना और अलगा धातु उपरे आमदानी शुल्क बढ़ाले केन्द्र सरकार। नीट UG परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामलार छानभिन लगी जयपुर पहुँचले CBI खास दल। आज बाहर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद CBSE तरफ हो 12 क्लास परीक्षा फल। परीक्षार्थी पास हार रही 85.20%। एवं June 21 दिन 2026 बचर लगी हवा OTET परीक्षा। इ बचर परीक्षा देवे 84,623 जन परीक्षार्थी। ऐतका विद्युत चलित गाड़ी व्यवहार करवा लगी राज्य लोक निवेदन करिछन परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। राज्यपाल कारकेटती एथर चलवा विद्युत चलित गाड़ी। लोकभवन छात उपर हेबा 500 किलोवाटर सोलार विद्युत शक्ति उत्पादन। नाकर कबियार ज्ञानपीठ विजेता शची राउतराय जयंती लगी सारा राज्यवासी जनाउछन श्रद्धांजलि। एवं 28 तारीख नु भुवनेश्वर न हेबा ABBP राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक।

0: ରଶ୍ମିତା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ନାଗରିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳାଚଳ କରିବ ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଏବଂ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 85%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 2026-27 ବିପଣନ ଋତୁ ପାଇଁ 14ଟି ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ 824 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଫସଲ କିଣାଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 622 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କପା, ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ, ଜଅ, ବାଜରା, ହରଡ଼ ରାଲିର ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
1: ଖରିଫ କେ ଲିଏ ଯୋ ଫୈସଲା ଲିଆ ଗୟା ଉସମେ ଜିତନେ ଭି ଖରିଫ କେ କ୍ରପ୍ସ ହୈ ଉନ ସବ ମେ କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ 50% ୟା 50 ସେ ଅଧିକ ଟୋଟାଲ 260,000 କରୋଡ ରୁପେ କିସାନୋଂ କୋ ପେ ଆଉଟ ଜାଏଗା ଇସ ପୁରେ ଫୈସଲେ ସେ ଔର ଇସ ସାଲ କା ଆନୁଆଲ ଖରିଫ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହୋଗା 824 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ LMT।
0: ଭୂପୃଷ୍ଠ କୋଇଲା ଏବଂ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ 37,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ 75 ନିୟୁତ ଟନ୍ କୋଇଲା ଏବଂ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ SPG ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜାତ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ 7-ସୂତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାଳିତ ଯାନବାହନର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା 50%କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ମପଟ୍ଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବହାର କମ୍ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଗାଡ଼ିର ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର, ସୁନା କିଣିବା, ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କମ୍ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ମପଟ୍ଟି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍କର୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ 2026ରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚସଖା ଶିକ୍ଷା ସେତୁ ଯୋଜନା, ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଶାସନର ସ୍ତର ନୁହେଁ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ନାଗରିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅସମାନତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଚଳିତ ଦଶନ୍ଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା, ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତାର ଯୁଗ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ କମ୍ମପଟ୍ଟି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ପୁରୀରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଇ କୋରାପୁଟ ଯିବ। ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 19ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ରହିବ। ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପୁରୀକୁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ 85%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 88% रु ऊर्ध छात्री कृतकार्य होता बेले 85% रु ऊर्ध छात्र उत्तीर्ण होती results.cbse.nic.in परीक्षाफल उपलब्ध हो छात्र छात्री माने डीजी लॉकर उमंग आप जरिया रे मध्य परीक्षा फल जानी परिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तीर्ण होइथिबा छात्र छात्री मानंकु शुभेच्छा जणाइछन्ती परीक्षा फल निर्विशेष रे छात्र छात्री माने दृढ़ आत्मविश्वास सह प्रतिटी आह्वान को सामना करी आगो को बढ़िया पई मुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ती प्रतिभावान युवपीढ़ी ही समृद्ध ओडिसा रा सारथी हेबे बोली श्री माझी कहिछन्ती ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीएचएसई द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षा फल आसंता सप्ताह प्रकाश पाइबो बोली परिषद पक्षरु सूचना दिया जाइछि चलित वर्ष गोटे दिन रे कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक पाठ्यक्रम परीक्षा फल प्रकाश पाइबो विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बेंगलुरु स्थित यूआर राव सैटेलाइट सेंटर एवं इसरो सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट परिसर को बुली देखिछन्ति मंत्री इसरोर वैज्ञानिक अधिकारी मानक सह ओडिसा रे विपर्जय परिचालना खाद्य सुरक्षा तदारक एवं प्राकृतिक संपदर स्थितावस्थार मानचित्र प्रस्तुति क्षेत्र रे उपग्रह तथ्य प्रदान संपर्क रे आलोचना करथिले मंत्री एही समय रे भविष्यतरे जोगाजोग व्यवस्था नाभिगेशन सैटेलाइट गुडीकर जटिल संयोगीकरण तथा निरीक्षण प्रक्रिया संपर्क रे अवगत होइथिले ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी आसंता मास 21 तारीख रे अनुष्ठित हेबो सकाळ 9:30 11:30 पर्यंत प्रथम पत्र एवं अपराह्न 2:30 4:30 पर्यंत द्वितीय पत्र परीक्षा हेबो परीक्षा पई आसंता मास 9 तारीख रु बोर्ड वेबसाइट bscodisha.nic.in रु परीक्षार्थी माने डाउनलोड करबा पई बोर्ड पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जाइछि केन्दुझर जिलास्तरीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा मुख्य अतिथि भाबे जोगदेइ कहिछन्ति एहि विवाह कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा को अधिक शक्तिशाली करिवारे अधिक सहायक हेबो योजना अनुसार प्रत्येक कन्यांक बैंक खातारे 45,000 टंका जमा कराजिबा सहित 60,000 टंका व्ययरे एहि विवाह संपन्न करा जाइछि सुवर्णपुर जिल्लारे ग्रामीण विकास और पंचायतराज व्यवस्था को सुदृढ़ करिबा लक्ष्यरे नूतन जिला पंचायत साधन केन्द्र को पंचायतराज और पानी जल मंत्री रवि नारायण नायक उद्घाटन करिछन्ति 2 कोटी ऊर्ध टंका व्यय अटकल निर्माण केन्द्र पंचायत स्तर में उन्नतिमूलक कार्यक्रम सठिक रूपायन सह लोकमानंकु सरकारी योजना संपर्क में सूचना और प्रशिक्षण प्रदान करिबो देवगढ़ जिलापालंक विकास भवन सम्मेलनी कक्षरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिलास्तरीय समन्वय समीक्षा बैठक जिलापाल कविंद्र कुमार साहूंक अध्यक्षतारे अनुष्ठित होइजैछि बालिका मानंक सुरक्षा सेमानंक सशक्त करिबा पई जिला शिशु सुरक्षा यूनिट कार्य करिबा उपरे जिलापाल गुरुत्वारोप करिछन्ति गंजाम जिला परिषद सम्मेलनी कक्षरे जिलास्तरीय प्राकृतिक विपर्जय कमिटीर प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होइजैछि नदी बंध समुद्र तट सुदृढ़ीकरण बन्या समय तळिया अंचल लोकंकु सुरक्षित स्थानांतरण पई व्यवस्था जल निष्कासन पानीय जल व्यवस्था आदि विषय आलोचना करा जाइथिला देवगढ़ जिला परिषद सम्मेलन कक्षरे जिला परिषदर दशम बैठक अनुष्ठित होइजैछि बैठक में विधायक जिलापाल जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रमुख जोगदे जिलार सामग्रिक विकास प्रक्रिया को त्वरान्वित करिबा उपरे गुरुत्वारोप करथिले एथिसो विभिन्न योजनार कार्यान्वयन संपर्क में आलोचना होइथिला रायगढ़ ब्लॉक सद्भावना सभागृह परिसर रे ब्लॉक स्तरीय जनशुनाणी शिविर अनुष्ठित हो जाइछि अतिरिक्त जिलापाल विभिन्न अभियोग रो सुनाणी करी तुरंत समाधान करबा को विभागीय अधिकारी मानंकु निर्देश देथिले नयागढ़ जिला प्रशासन पक्षरु सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वां जयंती उत्सव पालन अवसर में नयागढ़ ठारे साइक्लोथन और माराथन रैली आयोजन करा जाइथिला जिला स्टेडियम रु माराथन आरंभ होई नयागढ़ स्वयंशासित महाविद्यालय पर्यंत जाइथिला कार्यक्रम रे 200 रु अधिक युवक युवती अंश ग्रहण करथिले पाणिपाग दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप घनीभूत होबार संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार कालबैशाखी जनित वर्षा जो राज्य में तापमात्रा ह्रास पाई आसंता 24 घंटा मध्य वज्रपात सह वर्षा होने प्राय 24 जिला को पाणिपाग केन्द्र पक्षर् सतर्क सूचना जारी कर केन्द्र कैबिनेट 14 खरीफ फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि निष्पत्ति उपयुक्त शिक्षा पद्धति युवपीढ़ी मध्य दायित्वबोध और नागरिक भावना जाग्रत करें राज्यपाल सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा में उत्तीर्ण 85% रु ऊर्ध छात्र छात्री। आंचलिक संवाद आज एति।
2: आकाशवाणी कटक शुणु आज प्रसंग आजर प्रसंग वैश्विक आह्वानर मुकाबिला पाई प्रधानमंत्री आह्वान आलेख्य आंचलिक संवाद विभाग उपस्थापन मु जितेन्द्र कुमार नायक। सांप्रतिक वैश्विक परिस्थिति रे केतेक देश पक्षरु सरकारी खर्च ह्रास करिबा जातायात को सीमित रखिबा एवं शक्ति संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान लक्ष्य रे विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। केतेक राष्ट्र एक क्षेत्र रे बाध्यतामूलक नियम लागू करिछन्ति। से राष्ट्रगुड़िक तैल संकटर मुकाबला लागि इंधनर आवश्यकता अनुजाई उपयोग जातायात उपरे प्रतिबंधक इंधनर व्यवहारर निर्दिष्ट सीमा आदि लागू करिछन्ति। यूरोपीय संघ समेत प्राय 40 देश जरूरीकालीन ईंधन संरक्षण पर पदक्षेप ग्रहण कर 18 देश परिवहन ह्रासर रणनीति अवलंबन कर ईंधन व्यवहार पर सीमा निर्धारण हो दैनिक वाहन चलाचल को नियंत्रण करने गणपरिवहन को प्रोत्साहन देवा वैद्युतिक जान व्यवहार को त्वरान्वित करने आदि पदक्षेप ग्रहण कर 13 देश घर काम करार व्यवस्था किंवा दूर थी काम करार नियम लागू कर सार्वजनीन क्षेत्र में यह व्यवस्था विशेषकर कार्यकारी कर 35 अधिक देश शक्ति संरक्षण क्षेत्र में जनसचेतनता वृद्धि ईंधन सीमा निर्धारण सरकारी यात्रा कटकणा एवं सार्वजनीन स्तर में व्यवस्थित ढंग से ईंधन व्यवहार को प्रोत्साहन संक्रांत पदक्षेप ग्रहण कर रंधन पर आवश्यक तेल एलपीजे व्यवहार ह्रास करने लगे 3 देश सीधासख पदक्षेप ग्रहण कर ईंधनर जुक्तिसंगत व्यवहार ग्यास सिलिंडर को अर्धक पूरण करिबा एवं विकल्प भावे वैद्युतिक बा पीएमजी ईंधन उपयोग करिबा लागि विभिन्न राष्ट्र पक्षर सार्वजनीन स्तर में पदक्षेप निया जाइछि। केतेक राष्ट्र प्रशासनिक सेवा कर्मचारी को पाई घर काम करिबा किंबा कार्यालय ठारु दूर रही काम करिबार व्यवस्था को कार्यकारी करिछन्ति। घरोई क्षेत्रगुडिक पाई दैनिक कार्यालय को न आसिबार व्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करा जाउछि। पाकिस्तान रे सप्ताह को 4 काम करिबा एवं पाखापाखी 50% क्षेत्र रे घर काम करिबार व्यवस्था करा जायछि। इंडोनेशिया रे प्रत्येक शुक्रवार घरे थाई काम करिबार नियम लागू होईछि। श्रीलंका रे प्रत्येक बुधवार कार्यालय गुडी को बंद रखा जायछि। कोरिया कंबोडिया लाउपीडियार मलेशिया फिलिपाइन्स थाईलैंड वियतनाम पेरू एवं इजिप्ट आदि देश ईंधन संचय लागि नियमावली प्रणयन करिछन्ति। विद्युत संचय को दृष्टि रखी बांग्लादेश सिंगापुर कंबोडिया मलेशिया श्रीलंका थाईलैंड जोड़ान आदि देश में एसी व्यवहार को ह्रास करने सचेतन विकल्प व्यवस्था ग्रहण को प्रोत्साहन प्रदान कर पाकिस्तान में विदेशी यात्रा को संपूर्ण निषिद्ध कर जोड़ान आकाश और सड़क पथरे सरकारी गस्त और विदेश यात्रा उपर प्रतिबंधक लागू हो इजिप्ट इंडोनेशिया मलेशिया कोरिया पानामा तांजानिया आदि देश में ऑड इवन नंबर फर्मुलारे जानवाहन व्यवहार सह अन्यान्य परिवहन भित्तिक कटकणा लागू होईछि। श्रीलंका रे क्यूआर कोड आधारित गाड़ी चलाना नियम लागू करा जायथिबा बळे इंडोनेशिया रे बायोडीजल एवं वैद्युतिक जानवाहन व्यवहार को प्रोत्साहन प्रदान करा जाउछि। ऑस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देश में वैद्युतिक उपकरण व्यवहार ह्रास माध्यम रे शक्ति संचय पर साधारण जनता व्यवसाय प्रतिष्ठान एवं कार्यालय गुडी को परामर्श दिया जायछि। नेदरलैंड्स रे जातीय तैल संकट मुकाबला योजनार प्रथम पर्याय आरंभ करा जायछि। घरोई उपभोक्ता एवं व्यवसाय प्रतिष्ठान गुडी को सौरशक्ति व्यवहार तथा लक्ष्य आधारित पैकेज कार्यकारी करिया लागि कहा जायछि। फ्रांस ब्रिटेन चिली आदि देश गुडी करे वैद्युतिक जानवाहन व्यवहार उपरे प्रोत्साहन प्रदान करा जायछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्य भारत रे ए दिगरे संयम हेबाकु देशवासींकु आह्वान दैछन्ति। सांप्रतिक परिस्थिति तथा भविष्य आह्वानर मुकाबला पई एभली पदक्षेप ग्रहण नितांत जरूरी। युद्धर घनघटा मध्य भविष्य में उपजाक तैल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र संकट को प्रतिहत कर परिवर्तित जीवनशैली आपणेबार आवश्यकता पड़ुछि। एथिपई आमे सचेतन हेबास दैनन्दिन जीवन में यह कार्यकारी करिबाकु पड़िबो। मिलिमिशी ए दिगरे प्रयास करा नगले परिस्थितिर मुकाबला संभव हेबो नाही। एणु प्रधानमंत्री निवेदन कौनसी व्यतिक्रम किंबा अत्यधिक नुहे बर भविष्य रूपरेख पर एक मार्गदर्शन भाव में आपण पड़े।
3: ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ।
4: ଶ୍ରୋତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ।

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 7:15 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ସମ୍ବାଦ ପଢୁଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ, ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ 14 ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଧୋଲେରା ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 20,667 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନାଗପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ନିଟ୍ UG 2026 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା CBI। ଆଳୁ ପିଆଜ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦର ଆନ୍ତଃ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଉପରୁ କଟକଣା ହଟାଇଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2-ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ। ଏବଂ IPL କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବିତ। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି CCEA 2026-27 ବିପଣନ ଋତୁ ପାଇଁ 14 ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଖରିଫ ଫସଲଗୁଡ଼ିକର MSP ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 2,60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଋତୁରେ 824,00,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଶସ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ କ୍ରୟ କରାଯିବ। ବର୍ଦ୍ଧିତ MSP ବର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ସର୍ବାଧିକ 622 ଟଙ୍କା, କପା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 557 ଟଙ୍କା, ରାଶି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା MSP 2,461 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ଜୋଆର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4,023 ଟଙ୍କା, ବାଜରା 2,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ହରଡ଼ର MSP କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 8,450 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି।
2: ଖରିଫ କେ ଲିଏ ଯୋ ଫୈସଲା ଲିଆ ଗୟା ଉସମେଁ ଜିତନେ ଭି ଖରିଫ କେ କ୍ରପ୍ସ ହୈ ଉନ ସବ ମେଁ କଷ୍ଟ ପ୍ଲସ 50% ୟା 50 ସେ ଅଧିକ ଟୋଟାଲ 2,60,000 କରୋଡ ରୁପେ କିସାନୋ କୋ ପେ ଆଉଟ ଜାଏଗା ଇସ ପୁରେ ଫୈସଲେ ସେ ଔର ଇସ ସାଲ କା ଆନୁଆଲ ଖରିଫ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହୋଗା 824,00,000 ମେଟ୍ରିକ ଟନ LMT।
1: 2014-15 2025-26 ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 14 ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା MSP ପରିମାଣ 18.99 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା 2004-05 2013-14 ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 4.75 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ପ୍ରାୟ 20,667 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଧୋଲେରା ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଡବଲ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ପ୍ରଥମ ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ପ୍ରକଳ୍ପ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସରକାରୀ ଘରୋଇ ସହଭାଗିତା ଅଧୀନରେ ନାଗପୁର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ନାଗପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ। ନାଗପୁରର ଡକ୍ଟର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାର୍ଷିକ 30 ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ଓ ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୂପୃଷ୍ଠ କୋଇଲା ଏବଂ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 37,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାୟ 75 ନିୟୁତ ଟନ୍ କୋଇଲା ଏବଂ ଲିଗ୍ନାଇଟ୍ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 3,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଖରିଫ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦର ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। नीट यूजी 2026 प्रवेशिका परीक्षा रे अनियमितता एवं प्रश्नपत्र प्रघट मामला रे केंद्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई 5 जन अभियुक्त को आज गिरफ्त करिछि। अभियुक्त मानक मध्ये जयपुर रो 3 जन, गुरुग्राम रो जणे एवं नासिक रो जणे थिबा बेले अनेक संदिग्ध व्यक्ति को पचरा उचरा करा जाउछि। देशर विभिन्न स्थान रे सीबीआई पक्षरु तलाशी जारी रहिछि। तलाशी एवं गिरफ्तारी समय रे मोबाइल फोन समेत अनेक सामग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त करा जाइछि। सीबीआई राजस्थान स्वतंत्र ऑपरेशन ग्रुप एसओजी सह समन्वय रखी यही मामला रे प्राथमिक तदंत आरंभ करितिला। मेडिकल कॉलेज गुड़िक स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश चलित मास 3 तारीख में अनुष्ठित नीट यूजी 2026 प्रवेशिका परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट अभियोग क्रमे गतकाली एहाको बातिल करा जायतिला। सरकारंग पक्षरु अनियमिततार व्यापक तदंत पई सीबीआई को दायित्व हस्तांतर करा जायतिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आसंता शुक्रवार दिन संयुक्त आरब एमिरेट्स यूएई नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे एवं इटाली को 6 दिनिया गस्तरे जिबे। नुआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पश्चिम प्रांत सचिव सीबी जॉर्ज कहते पंचराष्ट्रीय गस्तर प्रथम पर्यायर श्री मोदी शुक्रवार यूएई में पहुंचे। सेठे से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान को भेटा सह उभय नेता पारस्परिक स्वार्थ संबलित आंचलिक और आंतर्जातिक प्रसंग उपर मत विनिमय हेबो। गस्तर द्वितीय पर्यायर प्रधानमंत्री से ही दिन नेदरलैंड्स पहुंचा सह सेठाकर राजा विलियम अलेक्जेंडर और राणी मैक्सिमा को भेटा सह प्रधानमंत्री रब जेटेन साक्षात आलोचना करार कार्यसूची रही। गस्तर तृतीय पर्यायर श्री मोदी रविवार दिन स्वीडन गोथेनबर्ग गस्त करेंगे। स्वीडिश प्रतिपक्ष उलफ क्रिस्टनसन आलोचना कर उभय देश मध्य द्विपाक्षिक संपर्क समस्त दिगुड़िकर से समीक्षा करेंगे। दुई प्रधानमंत्री यूरोपीय कमिशन अध्यक्ष उर्सुला फन डेर लेन्स एक शिल्प संक्रांत यूरोपीय गोल्ड टेबल बैठक को संबोधित करेंगे। गस्तर चतुर्थ पर्यायर प्रधानमंत्री सोमवार दिन तृतीय भारत नोर्डिक शिखर सम्मेलनी और द्विपाक्षिक आलोचना नॉर्वे पहुंचे। गस्तर शेष पर्यायर प्रधानमंत्री मंगलवार दिन इटाली गस्त करेंगे। गस्त अवसर में श्री मोदी इटाली राष्ट्रपति सर्गियो माटारेला भेटा सह प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी आलोचना करेंगे। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी। पश्चिमबंग सरकार आलु पियाज पनीपरिया तैलबीज खाद्य शस्य पशुजात द्रव्य और अन्यान्य आवश्यक उत्पादर अंतराज्य परिवहन उपर समस्त प्रतिबंधक हटाई देते। पूर्वर तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा यह सबू द्रव्य उपरे कटकणा लग जाइला फल आलु चाषी और अन्यान्य संस्थागुड़िक विपुल क्षति सही जमापड़ी। अन्य एक घटनाक्रम पश्चिमबंग सरकार शिक्षक निजुक्ति पौरपालिका निजुक्ति और समवाय सेवा क्षेत्र में निजुक्ति दुर्नीति सह जड़ित मामलागुड़ केन्द्रीय तदंत ब्यूरो सीबीआई को हस्तांतर करने को निष्पत्ति नहीं। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी गणमाध्यम को सूचना दे कहते वर्तमान सरकार सांगठनिक दुर्नीति प्रति शून्य सहनशील नीति ग्रहण करेंगे। आसंता कालीठारु आरंभ होउथिबा दुईदिनिया ब्रिक्स वैदेशिक मंत्री बैठक में जोग देबा लागि ईरान कजाकस्तान नाइजेरिया और उज्बेकिस्तान वरिष्ठ अधिकारी नुआदिल्ली में पहुंची। सेमानक मध्यरे ईरान आईनगत और अंतर्जातीय व्यापार उपवैदेशिक मंत्री डॉक्टर काजेम घारी बाबादी, कजाकस्तान प्रथम उपवैदेशिक मंत्री एरजान आसिक बाएव, नाइजेरिया वैदेशिक व्यापार मंत्रालय स्थायी सचिव राष्ट्रदूत डुनोमा उमर अहमद और उज्बेकिस्तान उपवैदेशिक मंत्री आलोएव बाखुरमजन जोराबोयेविच अछन्ति। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा फलाफल घोषणा करिछि। चलित वर्ष मोट पास हार 85.20% रही। झियों पास हार 88.86% थिबा बेले पुओमानक पास हार 82.13% रही। वायु सीमा कटकणा एवं जेट इंधन एटीएफ मूल्य वृद्धि को दृष्टि रे रखी एयर इंडिया किछि विदेशी रूट रे अस्थायी भाबे अंतर्जातीय विमान उड़ाण ह्रास करने को निष्पत्ति नेछि। एयर इंडिया पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार दिल्ली शिकागो, मुंबई न्यूयॉर्क, दिल्ली सांघाई, चेन्नई सिंगापुर एवं अन्य दुईटी रूट रे विमान सेवा अस्थायी भाबे स्थगित करा जिबाकु निष्पत्ति होइछि। आमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चलित सप्ताह चीन गस्तरे जाउछन्ते। तांको सह अनेक शीर्ष व्यवसायी एवं प्रजुक्ति विद्या अधिकारी गस्त करिबे। एक उच्चस्तरीय दुईदिनिया शिखर सम्मेलन में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भेटिबा लागि से बेजिंग गस्त करुछन्ते। आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य मैच रायपुर शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्जातीय स्टेडियम खेल। वर्षा जो टॉस पड़े विलंब हो। आर्थिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट कमिटी बैठक में 14 खरीफ फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि को अनुमोदन अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन प्रकल्प पर खर्च हो 20,667 कोटी टंका नागपुर अंतर्जातीय विमान बंदर आधुनिकीकरण को मिलला मंजूरी नीट यूजी 2026 प्रवेशिका परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामलें 5 अभियुक्त को गिरफ कला सीबीआई नूआदिल्ली आसंताल आरंभ हो दुईदिनिया ब्रिक्स वैदेशिक मंत्री बैठक और आईपीएल क्रिकेट वर्षा जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स मध्य मैच विलंबित संवाद शेष होला।
3: आकाशवाणी कटक शुणंतु जिला हलचल नयगढ़ जिला संपर्क रे
4: सुदूर सदर अपहंच अंचल स्वर उत्सव महोत्सव सभा समिति समारोह प्रगति दुर्गति एवं संगतिर अभिव्यक्ति को नहीं आंचलिक संवाद विभाग पक्ष प्रस्तुत करुछु जिला हलचल। आज जिला हलचल रे शुणंतु नयागढ़ जिला संपर्क रे तथ्य दैछंती आम नयागढ़ संवाददाता विश्वनाथ प्रताप पटनायक और उपस्थापन रे मु महेश्वर साहू। अक्षय तृतीय अवसर में नयागढ़ डाली गवेषणा केन्द्र में जिला स्तरीय अक्षय तृतीय कार्यक्रम पालित होता। मुख्य अतिथि भाव मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक जोगदे माटी माँ का पूजार्चना पर अखिमुठी अनुकूल करते। जिला मुख्य कृषि अधिकारी शिवनारायण सिंह परिचालन आयोजित सभा में मंत्री गोकुलानंद मल्लिक चाषी मान सरकार विभिन्न कृषक कल्याण योजना विषय अवगत कराइले। से कृषि और आनुषंगिक कार्यक्रम को अधिक लोकाभिमुखी करने विभाग अधिकारी

0: ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ସୀତାର ବାଦନରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ କହରବା ତାଲ ନିବଦ୍ଧ ରାଗ ପୂର୍ବୀ ଆଧାରିତ ଧୁନ୍ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଝାପ ତାଲ ନିବଦ୍ଧ ରାଗ ଶ୍ୟାମ କଲ୍ୟାଣ। ତବଲା ସଙ୍ଗତ କରିଥିଲେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଖାନ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतरराज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए

0: खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
3: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
6: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा

0: निजर करी नहीं
1: नमिता निजर पत्थर की मुठ ठेसी हेले बिल पत्थर पत्थर है पाए नहीं ही जाए
0: हेले मुई तो पत्थर के ही देवता लेके पूजा करी आसी छे बंटीर बापा मते तुम निजर करी नहीं बंटीर बापा
1: नमिता तुम्हें शर्त रो उल्लंघन करूछो
0: शर्त केनता शर्त काही शर्त मोन लगला बाहा लमे करी पास के डाकी नेलो मोन लगला गुड़े कुरे देलो ईटा तो बरसत ईटा
1: नमिता
0: बंटीर बापा का हेलो बंटीर बापा बंटीर बापा
2: दादा दादा
0: बंटीर बापा
2: दादा
0: बंटीर बापा
2: बाथरूम गले बथे दादर दादर काना हिचे
0: तुम्हें मोर पीछा काहे जे पड़ी चोसो
2: मते तुम्हें भूल बुझु छ नमिता
0: देखो भूल ठीक काना मुई किछि नै जानी मुई एतकी जानी छे तमे मोर अतीत मोर जीवन रो से पृष्ठा जेन टके मुई केबु चिरी करी फीकी सारी छे आउ ना सेटा के केबे बुई सोर करबा लगी चाहु छे आउ ना सेटा के केबे सोर करमी
2: मते माफ कर दिया नमिता माफ कर दिया मैं तमर चिपले तू कासु इठा केबे नै चाही अरे मुई तो तमर सुख चाही छे सुख हाँ मोर लागे मोर लागी तुम्हार जीवन नष्ट हो इटा मुई केबे नहीं चाहे नमिता केबे नहीं चाहे अरे रकत ई रकत केनु आइला कहीं आ गाड़ी तो कहीं नहीं पड़ी दादा इनो दादा ई जगह न खासु थिले ना हाँ तो दादा ई जगह न खासु थिले दादा आसु छा मुई चाहे मुई लो चाहे आश्चर्य कथा दादा बाहरे और नमिता घर भीतरे ले कारण खाना दादा अमर तुझन कर कथा जानी नहीं पारी तो
3: नहीं नहीं वही हंता ही नहीं दिए नहीं ही दिए हंता
2: मते माफ कर दिया दादा मते माफ कर दिया वही नहीं चाहे बार वही नहीं चाहे बार दादा मन लगे तुम्हारे घर भांगो वही चाहूँ चे दादा वही चाहूँ चे
4: अंकल
3: पंटी
4: तुम्हें केन के जाऊ छ
3: नै तो कहीं नै जबा
4: अंकल खेलमा
3: खेलमा जे तोर मां गाली देबे जेगा
4: मां तो भितरे अछन
3: अरे मां सीना भितरे अछन बापा परे इनो सुइछन
4: बापा तो इरे सब दिन सुइछन
3: बापा इनो सब दिन सुइछन
4: हां बापा इनो सुइछन मां उमई हे भितरे सुइसु
3: आश्चर्य कथा नमिता दादा मोर आसवार आगुनु भी अलगा अलगा सूचन हेले हेले कारण काना
4: अंकल चमकी गला ना
3: मुई कां कर चमकी मिबो
5: बंटी
4: अंकल अंकल मुई हन लुकु जे ने कहबो
3: आ ठीक अछे
0: बंटी
3: बंटी हे न लुकी छे
0: बदमाश तू ई न लुकी छु नहीं चल
4: चाड़ो न
0: छाड़ो काना
4: खेल में ठीक है
0: बोली बोली चल न
6: अरे अशोक सकालू सकालू के नारे बाहरी पड़लू नमिता अरे अशोक के चाह दियो
0: हाँ हाँ आनु छे
6: अशोक तू चाह पी मैं टिक्के आसु छे
2: हाँ दादा
0: अशोक चाह
3: हाँ नमिता आज तक सुर छे ये कम चीनी आउ इलाची पका चाह के
0: बिहा कहीं जी नहीं है
3: थैंक्स ये कम चीनी आउ इलाची पका चाह लगी
4: माँ मैं स्कूल जाऊँ जे
0: रो बैग देखा टिफिन नहीं चुकनी
3: अच्छा बंटी बेटा वो अंकल के तुर स्कूल नहीं देखो बेटा
4: आमर स्कूल आमर स्कूल तो पाखे अच्छे
3: हाँ
4: देखो वाला चला
3: हाँ लेट्स गो चल जी माँ चल
4: ओके अंकल ट्रेन बगीर जी माँ
2: ट्रेन बगीर
4: हाँ
2: ठीक अच्छे चल
5: संजय
7: बाबू अरे संजय बाबू
8: अरे महेश बाबू आसन आसन बसो
7: अच्छा संजय बाबू घर के किए आईछन काए
8: आपण अशोक कथा कहूचन मोर भाई टिया
7: जा हो आज्ञा बुझले काए इ घर के जिए आइले गले पारबे हेले माय झियाडर कुनुआ पारी नाय हुए रे बुआ आदे आमर घर के किए पटे आई छे जे नै आमर पूर्णिमा आमर पूर्णिमा मोर भाई बोलु छे इ बुआ काए भाई रे ভাই বলে তো আমি গুটে মার পেটর ছুয়াকে বুঝছু নহলে কেন কোকার পুও বোবার পুও নানার পুও কি কেন মাউসির পুওকে বুঝছু ই লেতা গুতা কিছু নাই আর ভাই মরি জীবনে এনতাতি যে হেইতিবা কাই ন আইয়া এ শ্বাস ঘর আডর সবু লুকবাককে আমি চিনু কি জানু
8: যে মহেশ বাবু
7: আজ্ঞা
8: ই সকালু সকালু এটা কেনাড়ু বাহারি পড়লে বলছে
7: কথা কাণা কি আজ্ঞা আজ সকালু বলছন চুরা দুটা বতরাইছিলু আমি তো দুহি পরানি কুটি নেলু হেলে সেজেন বাবু আইছন বাবুঙ্কর টন্টি চুরা বতরা উতরে নেই আর আমার পূর্ণিমা বইলে কি ই কদলি দুইটা যদি সানি নেমা বইলে বাবুঙ্কর টন্টি তো সট্ট সট্ট সট্ট সট্ট উতরি যা গো বইলে
8: আচ্ছা
7: হেতি লাগি বলি আইয়া
8: ওহো এইটা কথা
7: আইয়া
8: ওহো চিন্তা না করুন ঘরে কদেল থিবা বোধে
7: আইয়া
8: মু দেখু যে হ্যাঁ নমিতা কদেল অছে কা দেখো তো মহেশ বাবুঙ্কর টিকে দরকার অছে কদেল অছে বোধে আনুছ না
7: ই আমার পূর্ণিমা ভিল নেই আইয়া আদি ইটা মুই ঘরকে নাই পৌঁছি থিবি ন সাঙ্গে সাঙ্গে অর্ডার হয়ে যাবা হয় গো জন মাংস টিকে আনব তার বুয়ার লাগিছে সালা মাইঝি আডর কুনুয়া পরে বুঝলে সঞ্জয় বাবু
8: কানা
7: ইমানে উপরকে উপরকে যেতে দেখেই হুন ভিতরে ভিতরে তেল তেলি গুটে আর আমি পিরুয়া যাকর পিচকি কিরি অলগা আপন বসি থাউন মুই আনি আউছে ই বুয়া বহু এ তিনটা দেই নেলো যে গো জুড়ে দরকার থিলা দেইছ বইলে হে গুটক দিও নি যে খাই নেসি বইলে নমুই বাহালি সঞ্জয় বাবু
0: বন্টির বাপা কান ভাবুছ
1: কিছু নাই তো আচ্ছা নমিতা অশোক তুমি কেনতা লাগলা
0: মানে
1: আমার অফিসর সে বড়পণ্ডা আউ নাই অছন কাই তাঁকর ঝিওর লাগি সে একচুয়াল পিলাটে খুঁজুছন তো মুই ভাবলি আচ্ছা আমার অশোকর প্রস্তাবটা দেলে কেনতা হাতা
0: মুই কিনতে গিরি কই পারমি তার ছড়া তাকু নাই পচরে গিরি
1: হ তাকে নাই পচরে গিরি তার প্রস্তাব দেবাটা বি টিকে ঠিক কথা নহে আচ্ছা এনতা বি হি পারে নমিতা অশোক কাকে যদি ভল বুলা পাউতবা
0: মোস্তর করে পুড়ি গলানো কেসি মে আউছে
1: কেতে দিন নিজকে নিজে এটা ঠকব নমিতা কেতে দিন মোর বিশ্বাস ইহা দেবী তুমি অশোককে ভাল পাওছ হ নমিতা ইহা দেবী তুমি অশোককে হি ভাল পাওছ ইহা দেবী নমিতা ইহা দেবী
4: ক্যাপিটাল অফ তামিলনাড়ু চেন্নাই ক্যাপিটাল অফ তামিলনাড়ু চেন্নাই
0: ওহো বন্টি ভল করে পড়
4: ক্যাপিটাল অফ তামিলনাড়ু চেন্নাই এক্সপ্রেস
0: বন্টি চেন্নাই এক্সপ্রেস কেন বলছো ভল করে পড়
4: না না চেন্নাই
0: পড় বেলে যেতে না হলা কথা খালি
4: ক্যাপিটাল অফ তামিলনাড়ু
0: ওহো আচ্ছা চল দেখা ক্যাপিটাল অফ ওড়িশা
4: ভুবনেশ্বর
0: ক্যাপিটাল অফ তামিলনাড়ু
4: মা তামিলনাড়ু কাজে কসন হেন কলা সব নাড়ু বনে গেছন
0: ওহো মজি ন কোশ্চেন নেই অ্যানসার কো যেতে বেলে কহলে খালি কোশ্চেন করুচি আচ্ছা আচ্ছা এটা রক আর তুই মতে ফোর টেবুল কহ
4: ফোর ওয়ান জা ফোর फोर टू जाए
0: ए बहु भल करी कहो खाली झुमरु जुजे भल करी कहो
4: फोर वन जा फोर टू जाए
0: बंटी बंटी मत कान फाटी जा बंटी बंटी छौ चल आ नै पड़ तुई
2: आ हीरो केंदा केंदा वो
4: एक नंबर
0: बंटी चल कोले कोले खाई के सुई पुचा अशोक तमे भी आसो खाई देबो
2: दादा आसुन एका सरी खाए मुनो
4: बापा तो ऑफिस न नुए आसन
2: बापा ऑफिस नु नुए आसन
4: बापा तो ऑफिस ने सब दिन डेरी न आसन
2: हेले नुआ पड़ा न थिला बेले तो दादा जल्दी घर के पले आउसतिले
4: इनो भी जल्दी आसतिले ना गोमा हेले जानि छ अंकल मा आला दिन ना सब दिन डेरी न आउजन परे
0: बंटी चल कोले कोले खाई के सुई पुचा इतने नहला कथा खाली सीखी जे चल
2: आश्चर्य कथा दादा नमिता आसला दिनु डेरी रे ऑफिस रु आसछो हेले हेले का करी
0: ओसो आसो तमे भी खाई देबो
2: नै दादा सुन एका सारी खाए मुनो
9: बहू अरे ए बहू
0: महेश बाबू रावत
2: महेश बाबू
0: हां महेश बाबू रु
9: ए बहू
2: महेश बाबू
9: बंटी बेटा
0: अरे
9: ए बंटी
0: बंटी बाबा
2: दादा
0: बंटी बाबा का हैला
2: दादा
0: काला बंटी बाबा
7: खटके नमा
0: बंटी बाबा का है महेश बाबू बंटी बाबा
2: का है दादा
7: कोले कोले आगो खटके नउन के सुआमा हो
2: ए दादा
7: आ जा जूता खोलू तो
2: खोलू छे खोलू छे
0: बंटी बाबा काला बंटी
2: दादा
0: बंटी बाबा
2: दादा
0: बंटी बाबा
7: ए बहु आ जा टिके सुई दउन कोले कोले टिके सुई दउन
0: बंटी बाबा महेश बाबू बंटी बाबा का हैला
7: के जाने को बहु ऑफिस न बोलु छ हठात पड़ी गले तेहरु तेहरु जोर जोर जोर जोर निसास ने गिर खासी बसले खासी बोले खासी बोलु छ बहु रकत पड़बा तकर खासी तेहरु जाई गिर दम धरि छ आमेले का करसु कह तो छिनछान हॉस्पिटल के बुही नै गलु ताकर उसो हां आदे ए बहु ए दे इटा ताकर उसो आर प्रेस्क्रिप्शन यहाँ दे इंजेक्शन गुटे दिया है छी कोले कोले सुई पड़बे बाकी काली सखालु ई प्रेस्क्रिप्शन हिसाबे उसो माने ठीक ठीक करी खुआबो बुझलो बोले मुई आउ छते ने
0: महेश बाबू टिके सुनो तो केते पैसा
7: ए बहु तुम के भिल देखसि जे नै गो भय गो मुई संजय बाबू कर संगे खाली गुटे ऑफिस नो चाकरी नै करबार तोमर पड़ोसी मिल तो है तार छोड़ा सखाल पाइले तो डेली किछ नै किछ मागी आउ छे आज कदेल दुईटा काल गुरोस ठीके तार बदला केते पैसा फिरै छे नै नै केते पैसा फिरै छे तोमे भी कथा कहिसो जे हे सब छाड़ो आ उसो कोसा ठीके निघाकरी खुआबो हैं आउ छे अच्छा बहु सुनो तो संजय बाबू कर आघर नु एंता किछ माने खासबारटा
0: नै नै हेंता किछ नै थई
7: हेंता किछ नै बोले अच्छा से प्रेस्क्रिप्शन टा ठीक दियो तो
0: हां आदे आदे धरो
7: ए बहु आदे ई टेस्ट माने सब लेखा हि छी काली सखालु जाईकिरी आगो ई टेस्ट माने करै नेबो बुझलो आ प्रेस्क्रिप्शन हिसाबे ठीकरी उसो खुआबो हां मुई आउ छे
2: महेश बाबू टिके
7: का बोलुछ ना या
2: इ दादांकर ऑफिस नो सबु दिन अंता लेट माने लेट नाइट तो कर काम चालू थी
7: नाई तो के कहला
2: नाई नाई जस्ट जानवा लागी चाहुतली
7: ना हले तो आया हमर ऑफिस एंते ही 5 बजले बंद हो जाईसी
2: 5 बजनु
7: आउ बोले मुई आउ छे आया साडे मोर लेट देखि कि हमर घर लुके फेर केतनी केते घबरौ थुबे आउ छे आया
2: आ गया दादार काना हिचे अरे पचरो छे परे दादार काना हिचे
0: कण हिचे बोले मुई मुई केन दिगरी कहमी
2: तुमे खाना ई महेश बाबू के ठकला बगिर मते ठगी दबो काली राती दादा खासु थले ना अरे काली राती दादा खासु थले ना देखिया सो अरे ई ठाने काली राती दादा खासी खासी करी ब्लड बांती करवार मुई निजर आखी देखी जाए कहला अरे कहला पचरो छे परे कहला देखो देखो मैं पचरो छे दादार का है छे
0: ब्लड कैंसर
2: ब्लड कैंसर के भो
0: बिया गुरु
2: तुम्हें के भो जान लो
0: बिया गुरु
2: व्हाट हाउ डिस्कस्टिंग हिटा हिटा सुसाइड है नमिता सुसाइड है ଆରେ ମୁଇଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସବୁ ଜାନି ଶୁନି କରି ତୁମେ ତୁମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଡିସିଜନ୍ଟେ ନେଲ କେନ୍ତେଇ କରି। ହଁ ମାନୁଛେ, ମୁଇଁ ମାନୁଛେ ମୁଇଁ ବେକାର ଥିଲି ବୋଲିକରି ତମର ହାତ ଧରି ନାଇଁ ପାରିଥାଇ, ହେଲେ ମୁଇଁ ହାର ନାଇଁ ମାନିଥାଇ ନମିତା, ହାର ନାଇଁ ମାନିଥାଇ ମୁଇଁ। ଖାସ ତମକୁ ନିଜର କରବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଦିନ ରାତ ମେହନତ କଲି ଚାକିରିଟେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ଶେଷକେ ଶେଷକେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ପାଇଲି ବି, ହେଲେ ହେଲେ କା କରି କା କରି ନବିତ, ଏ ତିନ ଚାରିଟା ତୁମେ ମୋତେ ଡାକି ନାଇଁ ପାରିଲ, ମୋର ଉପରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଥାଇ। ଆରେ ମୋର ଉପରେ ତମର ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଥାଇ
0: ଥିଲା ଅଶୋକ ଥିଲା, ମୋର ନିଜର ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଥାଇ
2: ନମିତା,
0: ନାହିଁ ଥାଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ
2: ନମିତା।
0: କଥା ହେଲା ଇଜ୍ଜତ, ମେହେଜି ଟୁକେଲଟି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ଢାପିକି ରଖବାର ଲାଗି ତାକେ କେତେ ତକଲିଫ ଉଠାବାରକେ ପଡ଼ସି ସେ କଥା ତମେ କେ ଜାନ ଅଶୋକ।
2: ନମିତା
0: ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥି ମା ବାପା ମଲା ହୁତରୁ ବି ମୁଇଁ ନିଜେକେ କେବେ ଏକଲା ନାଇଁ ଭାବି, କାଇଁଥି ଲାଗି ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ କାଇଁଥି ଲାଗି, ଖାସ ତମର ଲାଗି, ତମର ଭଲ ପାଇବାର ଲାଗି।
2: ନମିତା
0: ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଅଶୋକ, କେତେ ଦିନ ଟାକି ଟାକି ବରସ ପାଇଗଲା, ନା ତମର ଦେଖା ଥିଲା ଆଉ ନା ତମର ଚାକିରି, ଦିନର ଉଜାଲା ତ କେନ୍ସି ରକମେ କଟି ଯାଉଥିଲା ଅଶୋକ, ହେଲେ ହେଲେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ଆସିକରି କବାଟ ପିଟି ଦଉଥିଲା ତ, କିଏ ଆସିକରି ଛତୁ ପରିକି ପଥର ଫିଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା ତ, କିଏ କହୁଥିଲା ନମିତା ମୁଇଁ ତତେ ରାନି କରିକି ରଖମି, ତ କିଏ କହୁଥିଲା। ଆରେ କିଛି ନା ହେଲେ ଆଜ ରାତ କୋ ଲାଗି ହେଲେ କବାଟ କୁଲ।
2: ନମିତା ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ମୁଇଁ ଆଉ ଶୁନି ନାଇଁ ପାରେ, ନାଇଁ ଶୁନି ପାରେ ନମିତା।
0: ଏତ୍କି ଶୁନିକରି ତକି ଗଲ ଅଶୋକ, ତ ଥରେ ଭାବିକରି ଦେଖ ମୁଇଁ କାଣା ନାଇଁ ଶୁନିଥିମି, ମୁଇଁ କେତେ ନାଇଁ ସହିଥିମି।
2: ମୁଇଁ ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛେ ନମିତା, ସବୁ ବୁଝି ପାରୁଛେ, ଜାନି ଶୁନି କରି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ କି, ଏଇଟା ତ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ସେ କିଏ ଜାନେ ସଞ୍ଜୟ ତାର ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଦୁଇ ମାସ କି ଦୁଇ ବରଷ ଗଲା ଉତରୁ, ଆରେ ତାର ଉତରୁ ତୁମେ କାଁ କରବ, ହେତେବେଳେ ଏଇ ଦୁନିଆ ତମକୁ ଜି ଦେବା ଏଇ ଦୁନିଆ। ଦେଖ ନମିତା, ଇହାଦେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛେ ନମିତା, ମୋର କଥା ମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବିହାଘରକେ। ଦେଖ ନମିତା, ହେନ୍ତେ ବି ସଞ୍ଜୟ ତାର ଜୀବନ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଆରେ ଦୁଇ ଦିନ କି ଚାରି ଦିନ ଗଲା ଉତରୁ ତୁମେ ଚେନ୍ ଏକଲା କି ସେ ଏକଲା। ଦେଖ ପ୍ଲିଜ୍ ନମିତା, ମୋର କଥା ମାନ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବିହାଘରକେ। ଦେଖ ନମିତା, ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ମା ନମିତା, ଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ମା।
0: ଆଉ ବଣ୍ଟିର ବାପା କେ ମୁଇଁ ଇନ ଏନ୍ତା ମରବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମି, ଆଉ ବଣ୍ଟିକେ ମୁଇଁ ଅନାଥ କରିଦେମି। ୱା ଅଶୋକ ୱା, ମନ ଲାଗ୍ଲା ହାତ ଧରି ପକାଲ, ମନ ଲାଗ୍ଲା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତମେ ମୋତେ କାଣ ବୋଲିକି ଭାବିଛ, ତମର ହାତର ଖେଲନା ଯେନ୍ତା ଚାହେବ ହେନ୍ତା ଖେଲବ।
2: ନମିତା
0: ସୋର ରଖ, ବଣ୍ଟିର ବାପା 7 ଦିନ ଯିଉ କି 7 ମାସ, ସେ ମୋର ବିହା ହେଲା ପତି ଆଉ ମୁଇଁ ତାକର ବିହା ହେଲା ପତ୍ନୀ, ସେ ଯେନ୍ତା ବି ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ମୋରା ଆଉ ମୁଇଁ ତାକରେ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଉଠବାର ଅଶୋକ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାଇଁ ଉଠବାର।
3: ନମିତା ଆଉ କେତେଦିନ ଏନ୍ତା ଲୁକି ଲୁକି କରି ଭଲ ପାଉଥିବା, ଚାଲ ଇଠାନୁ ବହୁତ ଦୂର ପଲେଇ ଯିମା।
0: ସତ୍ୟ ତେହରୁ
3: ବିହା ଆମା,
0: ଏତ୍କି ସାହସ ତୁମର?
3: ସାହସ ଅଛେ ବୋଲି ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛେ।
0: বন্টির বাবা কেলো?

0: अरे ये प्रेस्क्रिप्शन कार्डटा, अरे इटा तो मोर प्रेस्क्रिप्शन है गतकाली डेट रो, तार माने मते गलाकाली डॉक्टर निक निया है थिला। अरे हाँ तो खाली ऑफिस न हठात मुई जोर जोर खासी बसली, खासी खासी करी तारु तारु काण हला मुई मुई यार किछि नै जानी। तार माने काली नमिता मते डॉक्टर निके नहीं थिले। अरे अरे मेडिसिन
1: काणा देखुछ दादा,
0: किछि किछि नै,
1: एटा सब तमर मेडिसिन है दादा।
0: हेले अशोक एक्चुअली मते मते किछि नै,
1: तमर किछि सुन नै ना दादा, पर दिन राति तुम्हें खासु थुलो ना,
0: नहीं तो
1: खासी खासी करी ब्लड बांती करथिलो, आउ आउ काली काली ऑफिस न भीतर तुम्हें खासी खासी करी ब्लड बांती करथिलो।
0: अशोक तु तु सब काणा कहुछु, एक्चुअली मैं किछि बुझी नै पारबार।
1: तुमको ब्लड कैंसर है छे दादा।
0: अशोक
1: हाँ दादा, और अरे कथा तुम्हें निजे भल करी जानी छो दादा।
0: अशोक तो तोर मूड मुड़ा ठीक अच्छे तो
1: सत कथा जेते लुकाबार लगी चेष्टा कले भी सत कथा लुकी करी नहीं रहे दादा।
0: अशोक अशोक कले कले कह नमिता सुनी सुना पकाबा।
1: हाउ जानवार की सुनवार किछि बाकी नहीं नो दादा। अरे बिहा हबार आगुनु तो से सब किछि जानी सारी छन न।
0: का बोलु बिहा हबार आगुनु से सब जानी सारी छन।
1: हां दादा,
0: मुझे भाबुतली से किछि नहीं जानी, भाबुतली ब्लड कैंसर हबार कथा लुकै करी टाकर संगे संपर्क रखबाटा खाली पाप नुहे, गुटे गुटे विश्वासघातकता हबा। हेले मते काहे जना सब जानी सुनी करी से मते काण पायला मते बिहाई करी। ओतो काण पायला मते बिहाई करी, ना पत्नी मर्यादा ना पतिर सुख।
1: तार माने से आज तक?
0: हाँ, नमिता आज तक कुंवारी है।
1: व्हाट, मैं बुझी नहीं पारवार दादा, बुझी नहीं पारवार जने एते दुख सही करी भी तमर पत्नी है करी आज तक जी चे केंता बची चे केंता और रही चे केंता।
0: नहीं अशोक, अरे ताके दुख दपर मोर अभिप्राय नहीं था, मुझे तो उल्टिया तार सुख चाहती अशोक। अरे तार जदि मुई सुख नहीं चाहती थी तो शर्त रखी करी केवे भी ताके मुई बिहा नहीं हेती थी। तार छोड़ा नमिता के मुई बिहा नहीं है अशोक, नमिता मोते बिहा है छे।
1: तार माने
0: कहुचे सुन, बंटीर माँ एक्सपायर कला उतरू बंटीर लगी मुझे गोटे गवर्नेंस चाहूली। नमिता गवर्नेंस इंटरव्यू देवार लगे आई और से ही इंटरव्यू न से मोते प्रपोज कला मैरिज करवार लगे। मुई जानुचे अशोक, मुई मुई गोटे ब्लड कैंसर पेसेंट आर मोर बागिर गोटे पेसेंट रो कैंसी अधिकार नैन गोटे झील के बिहा हेकरी तार जीवन के नष्ट करवार। तार सत्वे भी मुई ताके बिहा हेली अशोक, इथिर लगी कि एतकी पर दुनिया ती एकला टुकेलटी जीवा के दिकरी चलवा के दिकरी कहारी ना कहारी साहय सहयोग तो दरकार, सेटा केही भी हो तार बापा हो भाई हो पुओ हो। तुई कह अशोक, जदि चाहती थी तो नमिता जीवन में काणा हेपे।

0: कहाँ हला? आज भी दादा नु है सन
1: तुमर लगी
0: मोर लगी
1: हाँ खास तुमर लगी बंटीर बापार आज ई अवस्था। अरे काना दरकार थिला हे दिन हे सब कहबार।
0: अन्याय खाली करबार लोग दोषी नुहे नमिता, अन्याय सहबार लोग भी सेते दोषी। तुम्हें कण भाविच तुमको संजय दा पत्नीर अधिकार नहीं देखरी तुमर प्रति न्याय करिच अंतत इतार उतरु थरे हेले भाबे।
1: आउ जदि नाई भावन जदि मते पत्नीर अधिकार नहीं दियो
0: तुमको मोर संगे जीवार लागि पड़वा। अरे तुमको इठाने एंते मरी मरी करी जीवार लागि मुई छाड़ी दे नहीं पारे।
1: अशोक मोर कथा टिके सुनो।
0: तुम्हें मोर कथा का करी नहीं सुनबार।
1: अशोक मोर कथा टिके बुझबा लागि चेष्टा करो।
0: तुम्हें मोर कथा का करी नहीं बुझबार।
1: अशोक मुई यहाँ दे कहार ब्याह एला पत्नी है।
0: नमिता
1: मुई यहाँ दे कहार ब्याह एला पत्नी है। सुखे दुखे सांग देमी बुझकरी अग्नि के साखी रखी करी मुई ताकर हाथ धोरी छे। आउ आजी आजी ई अवस्था नु मुई ताकु छाड़ी देमी नहीं। मुई ताकु छाड़ी नहीं पारे। एटा कोनो विश्वासघात हेबा।
0: हो तुमे जेते बेले मते छाड़ी देखरी पले आसथिलो सेते बेले कान विश्वासघात नहीं थई।
1: मुई तुमको बिहा नहीं है।
0: अरे भल तो पाइथिलो और बिहा हवा निष्पत्ति तो नहीं थिलो।
1: हेते बेलर कथा अलगा अशोक और यहाँ देर कथा अलगा।
0: मुई हेई कथा कहुचे नमिता हेई कथा कहुचे यहाँ दे परिस्थिति बदली जाइछे पाहे आग के बढ़े करी।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଲଘୁ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 11:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1

0: गुरुग्राम से और एक व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर याचिन मुखिया खबर संगे मुई तर्पण कुमार प्रधान। आर्थिक व्यापार बाबद कैबिनेट कमिटी बैठक थी 14 खरीफ फसल सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि के मिल्ला अनुमोदन। अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाईस्पीड डबल लाइन प्रकल्प लगी खर्चा होगा 20,667 कोटी टंका। नागपुर अंतर्जातीय विमानबंदर आधुनिकीकरण लागि मिल्ला मंजूरी। आइबा शुक्रवार दिन यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे आउ इटाली के 6 दिनिया गस्ती जीवे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। आइबा कालठानु मूल होतबार 2 दिनिया ब्रिक्स वैदेशिक मंत्री बैठक थी जोग देवार लगी पहुंचिले ईरान, कजाकिस्तान, नाइजेरिया आउ उज्बेकिस्तान वरिष्ठ अधिकारी। वायुसीमा कटकणा आउ तार ईंधन एटीएफ मूल्य बढ़ावार लगे विदेशी रूट थी अस्थायी भावे अंतर्जातीय विमान उड़ान कम करार के निष्पत्ति नेला एयर इंडिया। ईंधन व्यवहार कमाबार लगे प्रधानमंत्री सुरक्षा व्यवस्थार व्यवहार होथवार गाड़ी संख्या कम कले सरकार। व्यक्तिगत सुरक्षा लगे जाउथवार गाड़ी संख्या के अधा कले मुख्यमंत्री। बाहरला केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई परिचालित 12 श्रेणी परीक्षा फल। परीक्षार्थी पास कले 85% छात्र छात्री। यहादे देखा देथवार वैश्विक परिस्थिति आउ शक्ति संकटर मुकाबला लगे राज्य लुकु अत्का विद्युत गाड़ी ईभीर व्यवहार लगे लुकु निवेदन कले परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। नीट यूजी 2026 प्रवेशिका परीक्षा प्रश्नपत्र प्रघट मामला थी 5 जन अभियुक्त गिरफ कला सीबीआई। बहुत जल्दी चलवा पुरीनु कोरापुट तक नुआ एक्सप्रेस ट्रेन पुरीनु संबलपुर देकर कोरापुट जीवा इ ट्रेन। आईपीएल थी आज कोलकाता नाइट राइडर्स आउ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भितर चली मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स निर्धारित 20 ओवर चार्ट विकेट हरी कर 192 रन। जवाब थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 6 ओवर थी गोटे विकेट हरी कर 66 रन। आज मुख्य खबर एनु शेष होगा जुहार।
2: आकाशवाणी संबलपुर चलित अधिवेशन शेष करने पूर्व शुणु आगामी प्रचारित होगाक कार्यक्रम संपर्क में सूचना। आगामी सका 6:30 आज भवन उपस्थापना प्रफुल्ल कुमार माझी। सका 7:10 स्वास्थ्य सूचन शुणे कुकुर कामुड़े कौन करेंगे संपर्क में कहे डाक्तर लक्ष्मीकांत दास। गंगाधर संगीत 7:35 तपस्विनी द्वितीय भाग रही। संगीत परिचालना प्रभुदत्त प्रधान। रचना उपस्थापना एवं प्रयोजना प्रदीप्त कुमार श्रीचंदन। सका 7:50 और 8:30 संबलपुरी गीत। कंठशिल्पी हेले कमल कुमारी बेहरा, दयानिधि बेहरा, खदाड़ साहू और चित्तरंजन बेहरा। ସକାଳ 8:45 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏବଂ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। ସକାଳ 9:00 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥାଟି ଗୀତଟି। ଦିନ 11:05 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଢୋଲପାରି ଭଜା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ, ବିଳାସିନୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତୁଳାରାମ କଲିତ। ଦିନ 11:30 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲା ଝରକା ଏବଂ ଦିନ 12:00 ବାତାୟନ। 12:30 ଏନ୍ସିଆର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦିନ 1:05 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ରୀନା ଦାସ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ, ତୁଳାରାମ କଲିତ ଏବଂ ଉଷାରଣୀ ବାରିକ। ଘର ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ 1:20 ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ହଜିଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦଳବେହେରା। ଦିନ 2:45 ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଥିଲା ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରାତି 11:09:04। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଜିର ଅଧିବେଶନ। ଆଗାମୀକାଲି ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ 5:53। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।